0: Extended by popular demand, Wondershop Fest has been extended till 14th October. It's your final chance to bundle up and save big with savings of up to 70% from brands like Nature's Farm, Comvita, Kinohimitsu, Omron, Dr. Wu, Acer Pure, and more. Catch daily flash deals at 12 and 8 p.m. Limited quantities available. When it's gone, it's gone. Watch, shop, save. Hurry, promotion ends 14th October. Visit wondershop.sg now.
1: A prominent businessman enters into an illicit affair with a former employee. She and her husband are now blackmailing him. Going to the police would turn his affair into a matter of public record. To keep his marriage intact and his mistake hidden, he turns to the only option left. A private detective agency run by the husband and wife team of Naman and Nidhi Jain.
2: Hello.
1: The detectives have the identities of the blackmailers. What they need now is an address.
2: Sir, I'm talking to you. Your bank documents have come. वाले एड्रेस में, लेकिन एड्रेस ट्रेसेबल नहीं है और कुरियर पर्सन खड़ा भी है वहाँ पे। अब अपना एग्जैक्ट लोकेशन बता दीजिए ताकि पर्सन डिलीवर कर सके। सर डॉक्यूमेंट्स इम्पोर्टेंट है सर, नहीं तो रिटर्न हो जाएगा वो। तो अल्टरनेट एड्रेस आप दे दीजिए सर।
1: With no address to go on, the team needs to improvise. Naman discusses options with his team.
3: आप क्योंकि उसका घर नहीं मिल रहा, सारे एड्रेसेस पोस्ट ऑफिस में जाके चेक कर लिया है, इन्होंने शायद एड्रेसेस ही अपने डाटाबेस में गलत मेंशन किए हुए हैं, तो हमें इसका घर तो ट्रेस हुआ नहीं। सब्जी मंडी की आपने लोकेशन दी थी, सब्जी मंडी में भी जाकर उन्होंने पूरी टीम ने चेक कर लिया, सब्जी मंडी में भी कोई दिखा नहीं कहीं पर भी पर्सन। तो ये मैंने बात क्लाइंट को बता भी दी है। तो अब क्लाइंट ने क्या किया है कि अब हमारे पास एक ही तरीका था, जो आप जैसा आपने फ़ोन पर भी सजेस्ट किया था मुझे कि भाई इसको बेट डालनी पड़ेगी। अब
1: Naman and Nidhi's detective agency originally investigated corporate espionage. But in a post-pandemic world, the growing market isn't corporate, but the business of love.
3: Out of all the cases that we undertake, pre-matrimonial cases is the maximum number of cases that we get. Our company used to book when we started around 2 to 3 cases in a month. Right now we are doing 150-200 cases in a month.
1: In India, marriage is more than a bond between two people. It's a union between families. More than 90% of marriages in India are arranged. Love marriages, on the other hand, are typically seen as an act of rebellion. Unfamiliar with this relatively recent approach, parents are turning to detectives for help. Nitesh and Vandana Sethi are concerned about their daughter, who has fallen in love.
3: किसी भी तरीके शादी करना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर हम जो है उनके सिर्फ नेगेटिव्स को ढूंढते हैं, ठीक है, ताकि आप डॉटर को कन्विंस कर सकें दैट ही इज नॉट द राइट बॉय फॉर हर।
1: बैकग्राउंड चेक्स लाइक प्रीवियस और करंट मैरिजेस, अफेयर्स, मेडिकल हिस्ट्री, इवन पर्सनल इंडल्जेंसेस लाइक स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आर इंक्लूडेड इन द ऑडिट।
3: कि हम लड़के को फिजिकली फॉलो करते हैं और उसकी एक्टिविटीज़ को वॉच करते हैं कि वो दिन भर में कहाँ जाता है, किससे मिलता है और क्या करता है, जस्ट इन केस अगर वो किसी भी गलत एक्टिविटी में पाया जाता है, जैसे कि स्मोक करते हुए, ड्रिंक करते हुए, ड्रग्स लेते हुए, या फिर किसी और गर्ल से अगर वो मिल रहा है, किसी बैड हैबिट में है, तो किसी रॉन्ग कंपनी में है, तो हम उस केस में उसे कंप्लीट वीडियोग्राफिक एविडेंस कलेक्ट करते हैं। क्या होता है कि जो चीज़ आपके लिए नेगेटिव है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी डॉटर के लिए भी नेगेटिव हो। बेसिकली ये केस है कि जिसमें देयर डॉटर हैज़ फॉलन इनटू लव विद अ बॉय एंड द फैमिली इज अ वेरी रिच फैमिली, राइट, एंड वेरी दे आर बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, एंड नाउ द डॉटर हैज़ फॉलन इनटू लव विद अ बॉय हु डज नथिंग एट ऑल एंड दे हैव हर्ड वेरी रॉन्ग थिंग्स अबाउट द बॉय। दे हैव ट्राइड टू कन्विंस देयर डॉटर बट शी इज नॉट रेडी टू एग्री टू एनीथिंग। People start, you know, integrating and saving money for his marriage right from the start, from the time the child is born, and they have got a lot of dreams attached to this, you know, children's wedding. But now, once the children have decided to go ahead with such a kind of marriage, they feel that what have we earned for? We cannot predict the outcome of any case, but as far as I could hear them, I found out, you know, the boy to be a little fishy.
1: Meanwhile, the detectives

0: Begin a digital forensic investigation and assemble a dossier on the unsuspecting young man.
1: Another part that I'll be covering is voter ID of this individual that will help us to check the address that is mentioned in the form if he's residing there along with his family. And yes, in this case, we have his details available along with his family members is also further details available after we download the electoral roll, we have the data.
0: They discover the boy has two separate registered residential addresses. Other red flags are raised.
1: It's a strike of entity. So hinting towards that he was associated with this entity, but no longer now. So question mark on the job profile. What kind of work he's doing? Because if he's saying that if he's working, he's earning sufficient. So now question comes, where is he earning?
0: It's time to gather intelligence on the ground. Nidhi heads out with trainee detective Kajal.
2: तो जैसे फील वेरिफिकेशन के लिए हम लोग जाएंगे तो वहाँ पे उनके नेबर्स या फिर रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स से हम लोग बात करके और डिटेल्स निकाल सकते हैं तो हम लोग को इन्वेस्टिगेशन और इजी पड़ेगा और जैसे कि मैं लोन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन के जा रही हूँ तो माइट बी आई गेट मोर डिटेल्स ऑफ इट और इन्वेस्टिगेशन में वो बहुत ईजी पड़ जाएगा हम लोग को बेसिकली हम उनके अगर घर जाएंगे तो हम उनको पता चलेगा कि हम इन्वेस्टिगेशन करने आ रहे हैं तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन करने उनके घर नहीं जाएंगे हम उनके नेबर्स से पूछताछ करेंगे या फिर उनके रिलेटिव्स अगर रहे तो उनसे पूछताछ कर सकते हैं फिर उनके फ्रेंड्स रहेंगे उनसे बात कर सकते हैं हम लोग
3: और अगर आप किसी पोजीशन पे खड़े हो जैसे ये सपोजिंगली ये घर है आपको यहाँ पोजीशन लेनी है तो आपको डे वन जब आपका पोजीशन डे वन है आज एक घंटे पहले आके या दो घंटे पहले आके देखना है कि कहाँ आप अपनी पोजीशन मेंटेन कर सकते हो जैसे अब ये घर है ये कॉर्नर हाउस है आप यहाँ पर रह सकते हो यहाँ पर चाय वाला है यू कैन ईजिली स्टैंड यहाँ पे दो घंटे तीन घंटे भी रहोगे कोई नोटिस नहीं करेगा सेकेंड थिंग ये देखना है कि उस घर में या उसके बराबर वाले घर में सीसीटीवी तो नहीं है आजकल मोस्टली हाउसेज में सीसीटीवी है तो अगर सीसीटीवी है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सीसीटीवी के एक्सेस में नहीं आना चाहिए आपकी पोजिशन वहाँ हो कि सीसीटीवी आपको कैप्चर ना कर सके
0: It's time for the rookie detective to put her skills to the test.
2: नमस्ते मैं काजोल बैंक से हूँ लोन जी मैम आपका कोई लोन नहीं है वेरिफिकेशन के लिए आई हूँ आपके पास में कोई रहते हैं उन्होंने लोन लिया है तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल चाहिए था
4: मैं
2: तो यहाँ पे रहते ही नहीं है
4: मम्मी पापा तो उनके यही रहते हैं
2: हाँ हाँ और उनकी मदर
4: मदर तो उनकी
2: हाउसवाइफ है ओके हाँ उनकी मदर उन गारंटर है हाँ समझी नहीं मैं
4: ओके वो 8 साल हो गए
2: हाँ हाँ
4: अब जो है
2: हाँ उनका नाम क्या है
4: उनका नाम है
2: ओ
4: अब तो पापा से भी नहीं बनते
2: अब पापा से भी रिलेशन अच्छे नहीं है
4: अच्छे नहीं है साल दो साल में एक दो बार आ गया
2: हाँ हाँ
4: बाहर गली में तो लोग घूमता फिरता रहता है
2: कोई बात नहीं मैडम थैंक यू डिटेल्स देने के लिए आपके समय के लिए धन्यवाद
0: Parents can choose how deep they want to dig. Most start with a $3,000 package. Unearthing deeper secrets costs more.
5: So love and marriage are two different things for people. Even, you know, people who have been into a relationship for 8 years, 10 years time, they come to us to get their partners because now they're entering into married relationship. Right? So which I think is very prudent. Right, everybody should get background checks done.
6: I remember जब हमने initially business start किया था, talking about 20 years, 25 years back, उस time arranged marriage या love marriage के लिए कोई proposal हमारे से आता था check के लिए, तो उनके words ये होते थे कि I know it's not good, ये अच्छी बात नहीं है कि मैं ट्रस्ट नहीं कर रहा और मैं बैकग्राउंड चेक करा रहा हूँ, बट आई वॉन्ट, क्योंकि कुछ सस्पिशन है, कुछ डाउट्स हैं. बट अभी इट्स वेरी चेंज, एवरीबडी वॉन्ट्स कि बैकग्राउंड चेक होना चाहिए, इट इज मस्ट.
0: While love marriages represent a small fraction of all unions, it is a growing phenomenon. So love auditing has also become a growing business.
7: I'm Rebecca Sangeeta Durai. I'm honored to be part of President's Challenge Night 2026. Join me on Sunday, 25th October, 7:30 p.m. live on MeWatch MediaCorp Entertainment on YouTube and Vive. Your support can make a meaningful difference. You can scan the QR code on the screen or visit mediacorp.sg/pc to donate generously.
8: All new on Singapore Hour. Ever fancied drifting through the streets of Singapore? Live out your Formula One fantasy with these high-octane thrills.
9: My top speed is 50 kilometers per hour, but I might as well be going 100.
8: And the jewelers lighting Hollywood with creations born right here.
10: Nicole Kidman was first, and then we had Michelle Obama.
11: Robert Downey Jr. wore one of our rings on his pinky finger.
8: All this and more on Singapore Hour, Friday on CNA.
12: Saturday, Japan Hour takes on Tokyo, Edo style. Brush up on tradition. Savor the art of Edo style sushi. And picture the past through Ekeyoe and Edo Kiriko. Then, from traditional artistry to artful living, step inside the creative world of Petals Tokyo. Japan Hour, Saturday on CNA.
13: Japan Hour is brought to you by Sumitomo Corporation. MUFG, committed to empowering a brighter future. Zip Air, all flights, all seats, free high-speed Wi-Fi available. IHI. And Takashimaya Singapore, celebrating 33 years of timeless finesse.
0: CNA 938, news you can trust to start your day informed, to navigate your finances and your world, and to make sense of what matters. CNA 938, news you can trust.
14: East Asia, a region steeped in history, now helping to write the future of our world.
15: From the corridors of power to the region's most remote corners, we'll break down the news driving some of the world's largest economies and explain why it matters.
14: On East Asia Tonight, with me, Otelie Edwards.

0: ग्रेजुएट 90,000 पर मंथ कमाता है। कोई सज्जन बात करना चाहता है? कोई सज्जन?
1: In the halls of this temple, an ancient tradition is taking a leaf from stock market trading floors. On offer is a low-cost community matchmaking service for Hindu families.
0: मांगलिक लड़का 33 साल 5/11 मई 92 बीटेक पीजीडीएम सर्विस एमएनसी 9 लाख का पैकेज।
1: Interested parents of prospective brides and grooms come together to see if the match is right. As rural Indians migrate to urban centers, old village connections are lost. Settings like these have become a trusted way for parents to find the right partner for their child.
2: NRI ladki UK London mein working hai. Sonam Sharma Punjabi family June 91 born 34 saal कद 5 फिट 6 बीटेक इन कंप्यूटर साइंस 80,000 पाउंड ग्रेट ब्रिटेन पाउंड सालाना पैकेज है। कोई सज्जन बात करना चाहता है? कोई सज्जन?
3: वी अनाउंस मिस्टर सो एंड सो, एनी गर्ल इंटरेस्टेड इन दैट बॉय? They look whatever. If there's nobody interested, then we pass. The next kid, same left side. People are meeting, and we haven't seen anything wrong, obnoxious, nothing. We are very simple here, and we help people to get the kids registered.
4: मुझे दो एक महीने हो गए यहाँ आते हुए, और बेटे के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ रिश्ता। तो अच्छी जगह है यहाँ पर, आपस में सब मिलते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, पहचान लेते हैं, देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और सबसे अच्छी बात तो यही है, पुराने ज़माने से अलग तो नहीं है, थोड़ा सा तरीका बदल गया। अरेंज मैरिज तो सबसे अच्छा है, अरेंज मैरिज तो सबसे अच्छा कल्चर है। लव मैरिज के अंदर तो जब प्यार किसी से हो गया, लव हो गया, तो उसके बाद तो कोई कल्चर ही नहीं है।
1: But while tradition offers a safety net, stepping into the shadows can lead to a trap. A blackmailer is holding a prominent businessman to ransom. He has a compromising video of the businessman. In exchange for this video, he wants $200,000 in cash. The detectives use a delaying tactic. They deliberately miss the deadline.
5: No. मेरे को अभी एक घंटे तक तूने रात में सुबह में जहाँ मर्जी मिल लेंगे, पेमेंट आएगी मेरे पास 100% आएगी।
1: The businessman gets the blackmailer to agree to a reduced sum of $27,000. The detectives have just 2 days to find the extortionist. Otherwise, the victim will have to cough up the cash. The clock is ticking. The blackmailer's wife is the businessman's former office manager. She was in charge of collecting payments. The enterprising employee diverted company funds into her own bank account and was caught red-handed. She then makes a proposition.
3: Now she started crying, right, that, you know, my husband beats me up, he, you know, he abuses me at home, you know, he needs 15,000 rupees every month from me, what do I do, like, you know, and I cannot return the money back to you, but, you know, I'm ready to do anything that you want me to do for you.
1: The businessman thought he was being compensated for his loss with a fling. But she was two steps ahead. While he was booking a hotel room, she plotted.
3: And this time when she met him there, you know, she asked her client to remove his clothes. Right? Once he removed his clothes, you know, she took out his mobile and started shooting our client.
6: 5 addresses of a subject.
1: If the video goes public, it would destroy his marriage and career. The detectives need an address.
7: What have you identified?
1: So far, nothing.
3: I tell you. उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो ये सोच रहा है कि वल्नरेबल टारगेट है 65 ईयर ओल्ड पर्सन है और अब ये फंसा हुआ है कर तो कुछ सकता नहीं है उसकी वाइफ को पता है कि इसकी वाइफ है इसके बच्चे हैं उसको ये मालूम है कि अगर इसने कुछ भी किया तो ये ही विल बी इन अ बिगर सूप सो लेट अस से इफ देयर इज एनी क्राइसिस एट ऑल इट बिकॉज़ वी आर डीलिंग विद क्रिमिनल्स वी आर यू नो डीलिंग विद द डार्क सीक्रेट्स ऑफ पीपल वी आर डीलिंग विद डार्क थिंग्स ऑल द टाइम
1: While the team hunts for the blackmailers, a different kind of tragedy plays out. A housewife, married for 12 years, has just made a startling discovery about her husband.
8: Yeah, hi. Please tell me.
9: Shockingly, I just found out that he's not straight and he's a gay.
8: After 12 years of marriage,
9: Daughter? Yeah.
8: So how come you have a daughter?
9: After 5 years.
8: Oh, okay.
9: But now when I realize this, I'm just thinking I cannot live with this lie. I have to end this marriage.
1: To get custody of a daughter and parental support, she needs more than just suspicion. She needs evidence, admissible, undeniable proof. The team decide to hide a listening device in the family car.
3: Brother, जो हमें कार में बग यूज करना है ना वो ये GSM बग यूज करेंगे ठीक है और इसका ना मुझे बैटरी साइज इंक्रीज चाहिए ठीक है क्योंकि मुझे चाहिए इसमें कम से कम 3 दिन का बैटरी ठीक है तो ताकि वो जो ना उसको रिप्लेस अगर करे 3 दिन में काफी रिकॉर्डिंग आ जाती है राइट हमें क्लाइंट को देने से पहले हमें टेस्ट करना है तो हम इसको हमेशा क्या करते हैं देने से पहले अपनी गाड़ी में लगाए जरूर कुछ टेस्ट करते हैं खुद की हाउ इज इट वर्किंग हाउ इज फंक्शनिंग
10: बस देखना स्लाइड ना हो स्लाइड आराम से हो जाए
11: तो अगर हम लीगली देखें सो वी आर सेफ क्योंकि उनकी अपनी कार है अपनी कार में वो खुद लगा रही है सो हम और उन्हीं को एक्सेस दे रहे हैं वो खुद ही सारी रिकॉर्डिंग्स चेक करेंगे
12: और हम जब भी बग प्लेस करते हैं क्लाइंट की कार में और क्लाइंट की प्रेजेंस में ही करते हैं नॉट इन हर एब्सेंस सो साथ में है तभी हम प्लेस कर रहे हैं सो इन दिस केस हमारे पास सिर्फ 2-3 मिनट्स हैं तो हमें बहुत जल्दी जल्दी बग प्लेस करना होगा